खनाय दनाय जत ताखौ बहुत एखाफोर मारे किसिं सोनो नरुग्न अजराव जतनन खुलुमुं याफारे फुंखौ जां जरनि पान्दावा लामसखौ अजराव नरखनाय दं आकाशबाणि आगरतला एफएम उजेन्त 101.6 मेगाहर्ज ताई तिनि अजराव आं नरखबाय दङै दङ नरखनि बुखौ आरजे मीना खाख्लाय नरख जतन काम करों दंबाय खेना हनैनाय ताई हर कलकमा गाहाम गोरोंखे दिनै फुंग आइ नरक गोजान गोजानखे असालन लामसगै दंखना दाय चिनि फान्दान बहायन खानानि बागै लामसगै दंखना नासिङै दंखनानै खाख्लायो आव बेलायखना आंबो गाहाम गोरों देखा दंखा जाख्लायनाय दिनै अफुं जराव फाय सकबायजाक दाय दिनै नरवै बाक्सा गोरोंनानि बागै खादंजाक फादिखे गोरोंलायनानि सिगां जोंनो नाय दंनाय गाहाम गोरोंखे दनाय जिनि मोदाय जिनि इसरगत न जों खुलुमुं रोजाबमुं खालामनानै बिसिं देखाय बन खुलुमुं याफार लायनो बालख्लाय फादि खोनालायनो रोजाबमुं दांसा खुलुमुं रोजाबमुं

आओ जिंग बेलै खना खना तो रिजर्व मन खना लाख्या दयाबाय बाक्सा जिंग खुलुम बया फार लाख्या आओ फारिके जेंजा गता उजरानि सालकामानि पांडा सालकामानि पांडाव जिंग दिनै सालायानो जिनि राइट ताय लिमिट रङ दैनाय जिनि मानथाय हायखाबाय जिनि आरि हायखाबाय जिनि जे कायसा सीमा रेखा दं मानि आकग्न जों दिनै सालायानो खाख्लाय नरक बहायनो आसुक लांमा ओ नरक ब सामुंख्लाय फायग्या दङै फायग्या नरकनि हायखाबाथिनि जानि जानि राइट मानथाय हायखाबाथिनि जे लिमिट्स दंमा रकन नरकबो सिना होनै नाय फारि आबनतैना जों दिनै सालायानो नरकबो जे सायमामा जराथै सादि जों जिनि राइट्स द बेबाग जागावनो जिनि दङ फियाबा राइट्स दंतैन जिनि लिमिट्सबो दङ जों जेसेक मानथाय जिनि दङ आबनिबो कायसा लिमिट दङ आरि दङ हायगाबा मारि दङ हायगाबा सीमा दङ जों कायसा जेसेकबानो जों मानथाय जिनि अधिकार नि हेम्पानो जिनि आरो बहायनो जिनि कायसा सीमा दङ आबो जिनि हाक्तरनि जिनि हाबांनि अफानोंथों जिनि नग नखं अफानोंथों जिनि हदा अफानोंथों जिनि बेभाग जागावनो जों गक सातानि जिनि मुभमेन्ट जिनि एक्सन बेभाग जागावनो जिनि लिमिट दङ आबनो जों सिनानि नांगौ आबनो जों बाक्सा बाक्सा एरेंनो गक साखांखै सिया बाहायनो साय दङ होनि होनजागौ बाक्सा बाक्सा बायथांनि राइट न' सियाबो दङ साखनि मानथायनोबो सिया दङ साखनि अधिकार नबो सिया दङ दाय बाक्सा दङ लिमिट्स नबो सिया लिमिट्स तामनि हिंगांखै जिनि बेबाक न' केरं बाय खबजा केरानि बिसिङाव जों दङै दङ मा दं तामनि हिंगा जों कायसा गामि आमजायाव दङ गामि आमजाय हायखाबा नग नखंनि आन्दाराव दङ गामि आमजायनि आन्दाराव दङ कायसा स्टेटनि आन्दाराव दङ दे कायसा कान्ट्रि हायखाबा कायसा हाक्टरनि आन्दाराव जों दङै दंमानि बागै जे हाक्टरनि जे स्टेटनि गोबां मा केरां दङ आबनि बिसिङाव जों जतन' खबजागौ मानथायावबो जों जतन' बाक्सा दाय लिमिट्सनि अबहायनो जों बाक्सा आबनि बागै बेबागनो जों सिदाय होननानै नांगौ जिनि मानथाय दाय जिनि आरि हायखाबा सिमानो जों सिनानै नांगौ फारि जों अकग्रनो दैनाय सालायानो बाक्साबा अबरग्न' सियाङै दङै मानो बाक्साबा सिउै मानो सिउै दंखांखेबो नरक साजादि गोबांमा जिनि बर' रग गक सातानि गोबांमा लिमिट्स क्रस खाय थांगौ वालाय थानि गक बांलाय थानि नग नुखुङो बाहायनो बिहेक बसाय गक सालायथानि बाहायनो गोबांमा लिमिट क्रस खाय थांमानि जों आरो रगबो नगौ जों खरगसा बुरैनि खरगसा बसायनि बिहेकनि बरगनि मानथाय हायखाबा बरगनि लिमिट्सरग गोबां मानो दङ हायखाबा जिनियाव हायंनि बोसाङै जों हास्थायाव दङै दङै अरबो जिनि मानथाय दाय लिमिट्स दंमानि रकमाव जों दिनै फारि सालायानो खाख्लायनो रग जतन' गोरोङै मानानो

दैमनि आबो ताबुक आगिव पाकिस्तान पान्जाब तमानि ताबुक आबो पाकिस्ताननि हाक्तरक लाइ थांका बुफानि मुंखा सर्दार किसान सिं तै बुमानि मुं विद्यावती हनै तै बिनि स्लोगान रकनि बिसिंग ओंखा इनकलाब जिंदाबाद आबंखा ब स्लोगान ती सामानी आबनकारै जालेवान वाला बाग बरगबो थालाय माओ नुगुइनाय बबालाय खेन खाबा जाखा उमर किसावन भगत सिं इंग्रेज रत्न केबंगै सभा खलायथानी सिख्ला रत्न गोरोंनानि बागै खाबा जारोनानि बागै ब नजवान भारत सभा होनैनाय गायसा मथा संसाखा आबुनिया उल' ब हिन्दुस्तान ससियलजिस्ट रिपाब्लिक एसोसिएसन होनैब संसाखा देशन फियकनानि बागै बुमखेदार दानि ब रमजाखा आबुनिया उल' ब मार्च दालनि साल 23 हायखेबा 23 तारिक मार्च 1931 बिसिव बन लाहौर जेल फासी रेजाखा आबुनियागुलो जोंते कैसा सैमालयानो तिनि लता मंगेशकरनि बाहायन आसाइमानि साल जों बनत जतन सैमानो बंखा खरक्सा रेसाबना गोरों कुक जिनि भारत हाक्तरनि बर' रकनि बिसिंग तै बंखा बिनि कुंकिलानि खरां बहनि हेन्जाखौ तै नाइटिंगेल अफ इन्डिया होनै बहन्जाखौ बिनि आसाइमानि दिनि देहाय साल 1929 बिसुव इन्दर मध्य प्रदेश अब आसाइमानि तै बिनि सय बुमुं तंमानि हेमा मंगेशकर तै बिनि बुमा बुफा तंमानि तै बिनि आसाइ संग्रंनि बिसिङ अब जतनि सा अग्रा आबुनियागुल' बिनि हानक संतङ आशा भोसले उषा मंगेशकर तै मीना मंगेशकर तै बिनि फायुं तङ हृदयनाथ मंगेशकर अबायके बिनि सिनेमुं जों बिनि सिनेमुं तै बिनि करुनो साखाथ' जों साबायलाया आबुनकारै जों दिनैहाय सालो तै रक्न नायै नायखे हांखाय

हाँ उनके ताबोक खाना लाए ना होक बानी को तिन्नी होक बानी को गोचर खाना लाए ना आलू कायमान रखे को तामने हम बा मार्शिंग मॉल फायरक फायरक आलू कायननी चेंग रखा ताई कायमान रोबो नुगई चौंका है पनो चंग आलू भाई के काय अबनो शिलाए ना होक बानी जे एलएम करेंग लोग एवं शॉय शिमानी राय देते भाई के कायनना আলুনি পদরে পদ জাতঙ্গ অবনবিসিংহ চন্দ্রমুখী তাই অবনি কগ্নসং তিনি সালাইন অবঙ্গাই ত্রিপুরা পটেটো সিট এবার টিপিএস এই আলু বুঝলেই নিববার চং মানথগ হোকবার নি অফিস নগ

0: फायदी जों ताबो खनालेनो शेबोगो बरक तलामानिको
1: आव अजरावा जों सायमालेने शेबो बरक तलामानिको अबंखा एसआई सेंट्रल पुलिस बरक सुपुंजाकनाय आवनि बागै रंगमारी बीए बीकॉम बीएससी बीबीए हाइकेबा अबरकनते ग्रेजुएट नानि नांनाय नम्बरनि बागै कराकरि करै ताई फाइनल इयारो तंगै तंगनाय परि तंगनाय बरग हायनो अरव एप्लाई खालामनाय आबनि बागै सालमारी पाइथाकनि सालमारी अतालनि थामजि हाइकेबा त्रिस तारिख जरा तै आबनि बागै उमर हंगांके नैजिनि सिमे नैजिबा नैबिसिंग ओंनाय तै बाक्सा हंगाय जि चारनि सिमे थामजि जरा ओंनाय तै खाति जारुंनि बागै किसासो याकार मुंबो तंगानो कम्पिउटारनि बिसिंतै आमजक मुं नाहारजाकनाय तै आगरतलानो कार खबै हाक्तर गोनाङै नबररक अरव एप्लाइ खालामनाय तै आबनि बागै आमजक मुंनि तै इन्टारभिउ रक

0: नक नखुम खाई दंनानै नक तांगी दंनानै तांगी जानानै औ बहायनो जों स्वाधीन खेरजा तै जोंरो बानिया ख्लाय जानानै हायगाबा जों सेबक ख्लायनानै औ बहायनो जों स्वाधीन खेरजा फियाबा अस्वाधीन मामाबाय बाक्सा बाक्सा ओ अधिकार मामाबाय बाक्सा बाक्सा जिनि गोबां मा ख्लायदाय रग दङ तै आ ख्लायदाय रगनि बिसिङो जों जिनि आरि बहायनो बजाक दङ जों ओ आरिनो पारङै मानिया दामनि हिंगांकै जिनि हाक्तर बहायनो केरं दङ जों जतन न नाय नाय दै दुलनाय तै जों न नायजमनाय हायखाबा जों हामिया ख्लायखे जों रमनाय अबहाय केरं बहायनो जिनि जतनै साखावनो फिनजा अबनि बागै जों अबनो सिनानै नांनाय जिनि मानथायनो सिमाबाय बाक्सा जिनि गेरंनो जों सायमाना नांनाय जिनि आरिनो जों सायमानानै नांनाय तै जों जेफोरबानो जिनि मानथाय पैलाथ' जिनि मानथाय जों कक साया पानो जों सिया पानो जिनि मानथाय दङ जों बेबाक मानिया फानाङै मानो जों जिनि जगताकरि हिंखेबो जों मायाङै मानो आरो गोबां मानिनि जगताबो फायो नों अ सामुंनो मारा मान मानिया अब सामुनो नों रोङिया मानियाखे नों आरो जगताकरि हेखे इलिजिबल करि गोबां माबा सेबग्रकनि तलां थानि अहंकांकै जों आबनो नगो सैमानो आरो नों कासु जाखनाय तुमुंनो निन आरो इलिजिबल नों करि हिंकांकै निनि मानथाय दंफानो इलिजिबल बो नानि नांनाय आबनो कारि जों तांगि इलिजिबल इंगिया हानिखे ननो तो सोरोंनानि जराव सोरोंनानि अधिकार ननो रेखा नों सोरोंलिया नों परिलिया हिंखे आरो नों आरि बजाक सिनाय आबनि बागै जों गोबां माराव जों सेनानै थांखांखे सायमानानै थांखांखे जिनि मानथायनाव मानानै थांखांखे बो जों इलिजिबल इंनानै नांगौ पैलाव ननो सोरोंनानि अधिकार रेखा ननो रोंनगो परिनानै सोरोंनानै थांनानै फायनानै बेबाकनि ननो अधिकार रेखा आमजग मुङा जगनानै नों माया सियाङै दंखे नों कक सोंनानै कुइसन खायनानै फोरोंनाय रगबाय नों जे माया साख नों सोरोंनाय हिंगांखै फोरोंनायबाय नों फोरोंनायनो सोङै मानो सायमानै मानो अबाखे गोबां मा नों नलेज नाय मानो गियान नाय मानो आन्जराव नों नालै हांखै उ जेफोर जब तलांनानै आजराव हांखै नों इलिजिबल इं हांखै नों गारजाखनाय आरो बाहायनो आरि दंनाय आबनि बागै सोरोंथानि रगो जों बेलाय खेनो सोरोंनानै नांगौ जिनि मानथाय दङ होनै सिमि माबाय जों बेबाक नमानगोलाग आरो बाहायनो केरां बजाक आव ओंखाय आबनोबो जों सिना नांनाय दाङै मानिया माबाय सिमि ओंगोलाग गोबां मा जागावनो जों दाङै मानिया जों दाङै मानिया होनहालाय जों इलिजिबल लोंना नांगौ जे साफानो मानानै हिंखाय आबनि बागै जों मानिया आबनि बागै जों रोजा गैया आबो सेबग' सिमिया गोबां मान थायोनो दङ जों बानिया ख्लायना थांखा बाहायनो आरोबो इलिजिबल लोंनानै नांगौ आरोबो नि गोबां मा सिजांनाय दङ गोबां मा आरो बहायनो नलेज जोंजांनाय दङ नलेज नाजांनाय दङ आरोबो नों सिना नांनाय सायमा नांनाय हेखासे नों आरो बहायनो इलिजिबल लोङै मानाय फारिगाव जराव कक दुगि आसागै नायनि एने कक दुगो साबो दं हेलो
1: मेडाम
0: बेलाय खाना फुं काहाम ताखौ
1: আবনো চিনি

0: ओके जों राइट नि साय जों आरो बेलाय बाय थां खनजर जाक हायखबा सार्थपर ओं माने नुक जाकदा
1: आंथ'
0: गोबां मानो आरो बाक्सा बाक्साखे मानियां गांखाय गोबां मानो कक गानाय हे दा बाक्साखौ मानियांखायथ' अबाहेरक त' कक कानाय न' होनलायो होनलायो आब' जोंबो होनलायो बनसिमो गोबां हामजागौ आहाय बनखे गोबां जारौ अमुंखा पुइला स्टेप जों न मानथाय न फोरोंमानि गलायो आब' जों जे फुंग' जों पालखे जेचराय रक न बागै चार मानि हाथिनि तु खांखे चामुं रक न बा माइ रक फानो जों माइ फान बाक्साखे जालाय खांखे मुइ फानो जों बाक्साखे बाग माने आबंगा पुइला चिनि राइट न जों फोरोंमाक लायो दा बुमा बुफारक हे दा गोबां फानो गैसा फानो बुमा बुफा सायगलांमानि रैगलांमानि नैनै सायमानो दा दिनै बर' रगनि त' जागा सम्पति गोबां मा दं फानो कागज पत्र रग त' गोरै बुखुक बाय फानो सायगलां खांखाय आब' न' दा हे दा ए सिमनाबो खाजा गया जे जे मानतै गानाव जे सिगां थाङै हगै दङैनै बन आरि नाहाते बेरा रुते नाहाते बलं हकते जागानाते हेनि हिमा हाइदा अबाहि बंलाय दंलायो
1: निनि जागाउ जे आइ थै बुफां फांसा दं माने आ बुहां खुन्दा जायखा दं आइ थै के यांग थै बा थै किसे यांग ओखो हाग किता काफाय जा दं
0: आइ थै ए आहाय रग न आहाय रग न आबो ता खान से जिनि कामे आम से रग ता बुआम थै इङै दं लायखौ गे बेबाक न सिना नांग ता बरग न
1: बाजे आबनो थै इथिनि आबो थै कोनो खाव थैलाय मोन खरै जों दं लायता
0: आव
1: आबनो आनि कय मु
0: औ अबनो दिनै जों जे जोंनो आइन बहाय नमतिखेनो रो जतन समान बाक्सा होनि होनबा न जे रोमानि जे चिनि माना दंमानि आबहायखे रोखांखे जिनि जतनै निजा मानाय रंब बोखा पुंगो नख न' खुङो बबाहायन' जोंनाव बमा बुफा अमन' नोंनादि अमन' नादि Nini, Dada.

बाबू ना पूछी न गए मैनो पूछी न गए छद दिवस या गुखी मनी सुई छन नी हंग गई खबस न नंग न सबस न नंग न सिंगल कोठो जाय ओलो का छगोई

कुशल मित्व पुरुष रथन हचन सुव मनो तखु मतर तियो रथ रच शिकल कति वन तक दिगति तक दुई तक हुई हको सो कति वन ओमण जी बग अचुल बसरी कुमल कल थब तय कजी दकला तिबा मति बसरी तशी यंग सया दिबा ओमण जी नो बजल बकला हाथी थंगन बफकुरिनी मुई मुंग तुमा सोम संग्रुं संगे ইমনাই দিবা সম সম সঙ্গী হব যাক সুগত আসুন মানে এমনাই দিবা

काफ़ंग ताखुते भी खुक्षों लाम सको तिने ने वांसुमा पांडा वो तिनु वांसुमा पांडा खनाई तो नाई जाता ताखु ताई भी खुक्षों नो का कसंबे लाम सको वांसुमा पांडा माय कांडे इच्छा पांडा सं वांसुमा ने बिशंग ते खावा भो कैसा कताल बयार छिपचारनानि सायतुगलायो सिनि लामो सों सिनि खातै वानसुमातै जत जरा अभायनो अंगाना आवकुन कगिया अभाय इंगिया रखंगै थांगो फियान सिनि खावो वायसावा तंथमों वायसा दुख वायसा सासामों वायसा सासाइमिया अब जत वही गदालीनो चीनी लांगमा आनंद सुख दुख साफल्य माने चासामों ते चाय चासाइमिया अब बने गदाल चीनी लामा फिया गायसाले सों सायनाइमानो आबहंखा जो बहके जत जराव जत तमंग जत केवे मंग बसखांग बसायमान दिन वन सम पांडा वो बेल कलैसा जक्सा रंग रियान हाई केवन मा गनांग गायसा मानले जतन रिमान अबंका मनीमु किसीसा मनीमु बी मला जा बेल कतर जी दिन वन समु पांडव मनीमु किसा मनीमु गाहम तंगनानी गाहम वन सूनानी पुटो चाहनानी धैर्य रमनानी लोकनी बसकांगो

बनि थायो सिं किसा बों बाय बासानानि आबो फान रे मानो आबने बगी खबं ताखुते बखुक्सों नरक दामा खलायनै दिनिनि वान सुमंगो नरगुदा आंबाय बाक्सा जे कक सागासन किसा मोनै मोंनो बिनि मला जा कतर ति फेमानो आबो कबिता नरबो कक दो बाय करंदि 232 62 53 कक दो नंबर

0: नांनाय ताय बाय थांनो आरो मांक लगी थांनाय आमन बागि तम्मा खलायने नों अकक समा सानाय जे आंगरन थेगा ए सर ए आबो अंगली हांक नों आसुगुइ थांबा दसाला नों फुंग मुइ थगे हांकांके दीप जर बद मुइ थगे हानिने माइसे थांना नो नो नांग सङानो मुइ थगिया अंखा फुंग अंखा गाहाय नै नों दीप जरबो मुइ थगिया सासिनाय मुइ थगिया नै माइसे थांनाय दीप जरबो चाय थांनाय बा तेन दिनि फुंग बु नों आफाके चाय थांनो बा नों मुइ थगिया फुंग मुइ थगलिया दीप जरा बाके कथक सङनाय हाय दीप जरा नों कथक सङनाय बागै नों मा वान सङनाय ता फुंग तांगै थगलिया फुंग तांगै थगलिया आबो वान सुखांका नाय नाय बा थगियां माने मेन कारण संमत मांस न संका वाहन न संका थस थगलिया तांग थगलिया सम नांग माने कम मुंखा निचु नों दीप जरा समरनाय समरिया दासान नों साला सामुंबो आबो हायनो सामुंबो आबो हायनो साया मानि न गबां हायफन आरन थिमि बाहायखो सोरंगमान बेलाय हामबाय ताखु दिनेश बेलाय हामबाय अबनो जतन से कतर को सिं जायन म वान सुइ दं खेले आबले जायन ओं नाय हेलो दिबर गाहाम सामुंखा
1: आं बिदि बाजार नि लक्ष्मी
0: बुखुक लक्ष्मी सादी डॉक्टर लाइन मा खबला सादी चायानि सिमि नों ताम सोरंखा निनि लामा बुदा अमाय सामुंखा जेता नों बाय थांनो नों दुसरखा अब आन बागै नंलिया आनिन चालिया आबायनि नों वार वान सुखा আবস মা ওয়ান সঙ্গে আনি চাইয়া হিনে বেখা ওয়ান সুখানকে বেখা থে ফিয়া অ সামুংতং চালিয়া তাই হিনজাকা বড় দেরাকা আবস মা ওয়ান সঙ্গে বেলে হামবাই কর্মান বাগিনে বখুনো

kamang ta khote bu khuk chon narok khnai tong go kaham tong di ring tong go lap ma kam tong di ring tong go lang ma kamang ta khote bu khuk chon ha pang ni kamang ma skill development ni bekhak te kamang ma skim tong go abon kare ne di para has te o kaisa nirman Sromik Kalan Prakalpa ini kaisa tunggu. Mukhyamantri Nirman Sromik Prakalpa 2.0. Apun bising tadi. Tam mana mai. Mukhyamantri Nirman Sromik Kalan Prakalpa 2.0. Aro थीमा नहीं छिमी आ आसाइमन छिमी थीमा जरा जो तो जरा वो ना चुबा जागो बाज जो तो जरा वो रंगपुशरी चुबा जागो आसाइ फ्रू मानो बसा पुरी नहीं मानो बसा काई नहीं मानो थीमा जरा वो रंग मानो ताई अबुन करे साइड बस और उम्मारों खांके आफ्रो वो पेंशन मानो। आपने बागे मासो रेस्टिशन फीस मार खलाई नहीं र मासो बा बस हो रो दूसरा चौलीस टका सीमित ना नहीं। तम तम माने। चलाया से पुरु बस आ खरोंग नहीं जरूरत ही 8,000 के माने। पुलिया चलाया से क्या 8,000 रंग माने। ते खरोंग सा चलाया से क्या अतेक खर्चा चलाया सही क्या 8,000-16,000 बस एक खरों में जाते और छह प्रजाग बस आपूर्ण ना पुरो वन निश्चिमी और तंग बतंग बिसिंग ते वन निश्चिमी 5,000 वो 800 टका बॉय पाइना नी ड्रेस ताई बैग रोक पाइना ने बगैर ते 2,000 प्लस 3,300 सिक्स निश्चिमी 8,000 2,400 बॉय पाइना नी लगियो खाता कागज कलम तै रिरो ड्रेस पाइनन बगे ते 2000 2400 प्लस 2000 4400 9 10 11 12 बंग बगे 4000 ते कॉलेज काखंके आरंग ते बबारियो बसाबरे काइनानी उपयुक्त अंका 50,000 बसाबरी नि काइफ्रो 50,000 चलाने बागे खमाया बसाबरी खरंगनै जरते बसाबरी काइनानी 50,000 के रांग रजागो

咁大家好，欢迎收听《来动物》，感动的灵动物，浪漫。निर्माण छोड़ूंगी। तब रजिस्ट्रेशन खालाई ना निकाय आशिक सुजुक सुविधा तो मन्ना ही रजिस्ट्रेशन खालाई ना नंगा ही सबो खालाई मन्ना ही जारा निर्माण छोड़ूंगी भाई गदाल जान जारा नौक नंग थनी शामों खालाई नहीं रो तब निर्माण छोड़ूंगी सबो नो होना ही निर्माण छोड़ूंगी जारा राजमिस्त्री जोगाली बोरक चिमी निर्माण छोड़ूंगी गया लगी तंगो बरोग राजमिस्त्री जुगाली तब नौक टांगना थंग तनी हाकुर खुना नंगना ही बरोग बो अवन करे अवन करे तंगना ही कारपेंटर दुगार सनाबना ही तीन बुनाई काटनी सामान खालाई ने बहु निर्माण छोरमिंगो खब जागो तेछा बो ग्रिल ग्रिल नी सामान खालाई ने बर बहु निर्माण छोरमी जे राजमिस्त्री बहु निर्माण छोरमी नो जोगाली बहु निर्माण छोरमी नो आवनी कारी ने जरा जे औष हमुं भाई गदाल जाग बर जतन निर्माण छोरमी बरो बाइके रजिस्ट्रेशन खालाइने जे सुजुग सुविधा तो मान्नाय आबो तो साकानो बाइके रजिस्ट्रेशन खालाइने इनके बायथां खालाइमे हांगांगे सब डिविजन जतो सब डिविजन लेबर अफिस तो लेबर इन्स्पेक्टर बायथांगि मालाइदि लेबर अफिस थांगिने लेबर इन्स्पेक्टर बाय मालाके लेबर अफिस थांगाके ब ननो सायनाय बाइके बाइके खालाइनाय आबनि कारैनाय नों मानखांके बायथांबो अनलाइन दै खालायमानाय अनलाइन नि बिसिंथै नों खालायमानाय नों अन नों सार्च मा खालायनाय NSKP निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प मुंनि कायसे एप्स दङ आरो थाङैनाय नों ओपेन मा खालायनाय ओपेन खालायनाय निनि मबाइल बाय रेजिस्ट्रेशन खालायनांनाय बेंक एकाउन्ट अपजन दांनाय जे जे नांमानि जतन रोना नांनाय नों तुमुं खालायमायाखै गानागिनिनि साब डिभिजनेल लेभेल लेबर इन्सपेक्टर दङ बबाय थांनायनि मालायनाय खालायमानो असुजुग सुबिदा माननानै हिंगांखै नों गाहामखे मा सायथबनाय बा नों बबाय मा रोङैनाय दा जे जे नांमानि डकुमेन्ट्स आधार कार्ड थामनायनि फट' बेंक बय अबरक्त नांनाय दं मबाइल नाम्बार आधार बाय बेंक आधार बाय निनि फन नाम्बार लिंक गोनां हांखेथ' टेबो साखौ आसोग सुजुग सुबिदा कलेजाव फरायनानै परितंनाय बोसारं बागैथ' बरनि स्कलारशिपबो बा बरनि स्टाइपेन्डबो गोबां रोजागौ PhD खालायनाय आबुनि खालायनाय जारा नार्सिं र' बा जारा प्रफेसनेलाव थानाय मेडिकेल लाइनाव गोबां इन्जिनियारिं लाइनाव फरायनाय रंनि बागैखे टेबो रां गोबां स्टाइपेन्ड रोजागौ हायखे असुजुगनि थाङै याखाखनाय जायथकदि असेबनो याफा नानानै जायथकदि जिन बरक थो गोबां कुं नो थाङै जानाय बरक जौगालिफा नोंथों राजमिस्त्रिफा नोंथों हायखाबा हाथानायफा नोंथों बफानो खालायबानो नरखनाय दङ FM उज्जैनथ' सारासा पयेन्ट दग हायखे 101.6 MHz गाहाम तंदी रिंग तंगो लांग मा

सरंगले मारो बुने दफाय बक्सा सम्बो आगु बिथां मानो आबुन करे नंग माल माता रखां गंगे तो बा जेसाबो खलाय गंगे लुकुरंग ने आ सामुनो या पिरे संगे मानो लेखा पुरा खलाय सेनानि बके टक टक मुरै तंगो मिलो प्र काय तंगो कबा मा सामुन खलायो ते कुबुन बारो बोनन सरंगने रां पैसा आइजेनानि बबो कैसा लामा रुतु गई मानो लेखा पढ़ा खाने हाई ना आसुगे मोबाइल ते रील्स नई दंग मोबाइल ते सिम दंग कब नंगला ने खाने आबो नोशल मीडिया शेयर खालामन नक रुमान आबो नो खालामन नीलक कई आबो खालामन ऑनलाइन कोचिंग खालामन दाम खालामया मजे जतन खालामन पैला मूसंना सेना खाने आखाजे वन सौना नाई।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
2: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष

0: पुरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया, लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आपने इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था, लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था NDA, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आज हम जानते हैं, जहां से सब लोग उसको देख के बैंक

0: बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम फास्ट पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था,
1: जी
0: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डिफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकोगनाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट ने किया था, और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-4-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसपे एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितने उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आए हैं, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को रिकॉन्सोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है, और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका
1: जी
0: मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो, उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में वो 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है, और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द AQR, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, SME जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंकिंग सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये SME क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है, एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो

0: मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हम आपके पहले बोला उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसेल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया, एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर एन वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल। और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स पे उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाया, AQR रिव्यू, इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट में 3 ट्रिलियन रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरओ करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो हम बीच बीच में आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली AQR था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स अब डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। 2-3 साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया। हमने SME में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन से, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडररैटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया। अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया, एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स।
1: आपने SMEs का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप SME सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और साथ ही साथ 2016 में आए IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं और IBC के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया?
0: देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो मैं IBC लेके आता हूँ। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 में आए थे और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी का हाथ में।

0: चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखें, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूफ कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप एसएमई सेक्टर को बात करें, एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ईसीएलजीए स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे, उसके लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ईसीएलजीएस लेके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ईसीएलजीएस में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। और उसके साथ एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल जो एसएमई सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे एसएमई सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे एमएसएमई सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आपका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप देन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था वो फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में एक खबर आते है कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज, पैंडेमिक का पहले, पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद शायद 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट्स बनाए, और थोड़ा जैसे मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। तो हो सकते हैं फ्यूचर में इसका हम इंप्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT और NCLT की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं, जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको, आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखें, कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने

0: मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14 से 15 लाख करोड़ कैश है, तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है और पैसा भी उठा सकते हैं और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्वाइन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका एवरग्रीनिंग बोलते। जब को पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे बैल लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, एलाइव सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपोजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया, पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
1: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके?
0: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था। और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उसमें नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है, गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर।

0: रहे पहले बात है कि रिकैपिलेशन तो होना था। रिकैपिलेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिलेशन हमने कैसे किया था? रिकैपिलेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिजिकल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैप्शन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन जीडीपी का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है, और इसका एसबीआई फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
1: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है, या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
0: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आते हैं तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को, जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
0: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपोजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गए एफसीएल में, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 US बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसे रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फर्स्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन, और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में एक आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड, ये जो कार्बन जेनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है

0: बैंक्स में, बैंक्स की तरफ आई मीन लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो।

0: जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
0: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
3: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवारंटेड रेफरेंसेस।
4: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
3: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
5: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश

0: त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
3: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
1: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है।

0: भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर।

0: के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शान से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहीं। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रहीं। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रहीं। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशीर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.

0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी, और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई, पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसू की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी, भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया, और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए, और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे, तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तार गोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा, पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेज, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन्स 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन इबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Huda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ibek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी

0: शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
1: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की

0: वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
0: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
2: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के युडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन द फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड 2 सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4 पॉइंट लीड मिडवे थ्रू द सेट। 2 सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट their hopes alive by taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: कैनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंह

0: फाइनल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था। जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही, जानते हैं अभिनव से।
2: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
0: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोहित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने 7वें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बवन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप। आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
0: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
2: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।